मरिरहोस्, मेरो देश हाँसिरहोस्, मर्न परे मै मरौ, मेरो देश बाँचिरहोस्, मेरो देश बाँचिरहोस्।

0: दारू पी के गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।